के दही रिड़क के लस्सी बनाई। एक थाली विच रोटी रखी, नाले लस्सी ले ठाकुर दी।

जद तक तू रोटी नहीं खाएगा मैं भी रोटी नहीं खानी पावे मेनू भुखिया मरना पवे। साध संगत जेड़े लोग ए गल कहंदे ने किथे रब

जे देखना है उसनु ते भगत धने वर्गा अपना मन बना लो। कदी क्या किसे ने ऐ ठाकुर ऐ सतगुरु ऐ रोटी पई जद तक तू नहीं खावेगा असी नहीं खाए। जद कदी क्या नहीं ओनू मिलन दी कोशिश नहीं कीती ते सानू ओ रब ओ सतगुरु किस तरह मिलेगा। ऐ तन्ना बैठे कहन लगा ठाकुर फैसला कर ले है, जे तू नहीं खानी ते मैं भी रोटी नहीं खानी। जद मन विच ए धार ले है, ता उस परमेश्वर नू आना पिया परतक होके तन्ने दे सामने बैठ गए।

परमेश्वर मिलिया ते ओ तन्ना हुण तिन्ना लोकां दा ज्ञाता हो गया। ते ठाकुर कहन लगे, तन्या तू याद कीता मैं आ गया, हुण दस तैनू चाहीदा की। उस वक्त तन्ने ने ये शब्द उचारिया।

आपे ही सब आप है प्यारा, आपे थाप उथापे, आपे वेख विगसदा प्यारा, कर चोज वेखे प्रभ आपे, आपे वन तृण सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापे, जप मन हर हर नाम रस ध्रापे, अमृत नाम महारस मीठा, गुर शब्दी चख जापे, आपे तीरथ तुलहड़ा प्यारा, आप तरे प्रभ आपे, आपे जालो ली हर आपे, आप अभुल न भुलई प्यारा, दूजा अवर न जापे,

आपे धरती आप है राहक आप जमाए पिसावे आप पकावे आप भांडे दे परोसे आपे ही बैखावे आपे जल आपे दे ठिंगा आपे चुली भरावे आपे संगत

कहूं पवन है के बहे बेग ऐसे कहे मोन आवे कथों ताह कैसे कहूं नाद है के भली भांत बाजे कहूं पारधी है धरे बान राजे।

कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो। कतहु भिखारी होय के मांग तू फिर तू भीख, कहु महादान होय के मांगो धन देत हो। कहु महाराजन को दीजत अनंत दान, कहु महाराजन ते छीन चित लेत हो।

कऊ शस्त्रधारी कऊ विद्या के बिचारी कऊ मारत आहारी कऊ नार के नकेत हो कहूं देव बानी कहूं सारधा भवानी कहूं मंगला मेड़ानी कहूं श्याम कहूं सेत हो।

0: श्रवण करो प्रोफेसर दर्शन सिंह जी दी नवी कैसेट अपना घर।
1: जे वो अपनी मर्जी नाल आनंदपुर दी धरती ते बैठ के अपने जीवन का फैसला भी ना कर सके ओनू उथो ही रोक दिता जाए। जे वो अपनी मर्जी नाल अपनी ही राजधानी दिल्ली विच भी ना पहुंच सके रस्ते।
0: भाई हरजिंदर सिंह श्रीनगर वालियां दी नवी कैसेट

सिमरो सिमर सिमर सुख पावो सिमृत नाम मने सुख पाइए सिमरो सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहि मिटाओ सिमरो।

मोहम्मद बिन तुगलक ने नामदेव नु पुछया, ऐ नामदेव, मैं हिंदुस्तान दा बादशाह, तू मेरे कोलों डरदा नहीं, किदे भरोसे ते तू अपना जीवन बता।

उस गोपाल राय की सेवा करते ने अकुल निरंजन जिदी कोई कुल नहीं जेड़ा माया दे प्रभाव तो उत्ते है उस गोपाल राय की भगत लोग सेवा करते ने भगती करते ने ते ओदे कोलों भगत दान दी जय जांचे संत जन उस गोपाल की सेवा करके ते भगत भगती

सराय चा बड़ा वड़ा शामियाना है तंबू है केड़ा है। ऐ बादशाह तू अपनी वास्ते तंबू लवाना है।

एक आकाश दस ए परमेश्वर दा सरायचा है तंबू है इंसान जहाजा ते चढ़ लवे राकटा ते चढ़ लवे कितना भी यतन कर लवे पर इस परमेश्वर दे तंबू विचू इंसान बाहर नहीं निकल सकता ओदे घर विच बैकुंठ है अते सपत लोक समान पूरी आले ए जड़े पताल ने ए ओदे घर विच

बहुत है। उस गोपाल राय दे कार खेड कर दिए, कदी किसे नु मार देंदी है, कदी किसे नु मार देंदी है। इस करके ओ जिड़ा मेरा गोपाल राय है, जिदे कार सूरज चंद्रमा दीवे तरह ने, मौत जिड़ी है ओ दे कार खेड।

भगत नामदेव ने बाणी च बयान कीता कि बादशाह कहन लगा ऐ नामदेव ऐ गां मरी हुई पई है इस नु जिंदा कर दे जे गां जिंदा ना हुई ता मैं तेनू जानू मार देंगा। नामदेव जी बादशाह दे ख्याल ते अपनी विचार शब्द विच

रामदेव नू बन लिया ते बादशाह कहन लगा देखूं तेरा हर बीठल ऐ नामदेव दस मैनू तेरा बीठल तेरा भगवान किथे।

कैद खाने पा दिता गया, सत घड़िया का समा दिता, पर सत घड़िया बीत गई, गऊ हाली तक जिंदा नहीं हुई। भगत जी आप बयान कर।

का नाम देव जी ने किया ऐ परमेश्वर, और कुछ ना कर बस गां जिंदा कर दे। परमेश्वर ने कृपा की थी ते मरी हुई गां जिंदा हो गई, बच्चे समेत ते नाले दूध दिया

ऐ मोहम्मद बिन तुगलक बादशाह, मेरी प्रीख्या लैण दा तां फायदा है जे हुण तू भी सच ते चलें, किसे नूं दुख ना देवें।

बादशाह ने खुश होके भगत नामदेव ने बहुत सारा सोना चांदी भेंट किया, पर नामदेव जी ने उस सारा सोना चांदी गरीबां च वंड दिता। आप तुर पए। बादशाह ने एक बड़ा कीमती दुशाला कह लो, सेज कह लो, बड़ा कीमती दुशाला सेज नामदेव वास्ते अपने दरबारियां नु दित्ती। बादशाह ने दरबारियां नु कहा, जिथे नामदेव जी बैठन ऐसे जा नामदेव नु भेट कर देनी, ते नाले मेरे वल्लों कहना कि बादशाह दी इच्छा है कि ऐसे जा किसे नु दान नहीं करनी, ए वछा के तुसा आप उत्ते बैठना है। नामदेव जी तुर पए, नाल बादशाह दे दरबारी तुर पए। नदी किनारे भगत नामदेव जी बैठे ने, दरबारियां ने अपनी कीमती सीजा नामदेव दे अगे तरी ते बेनती कीती। बादशाह सलामत दी ए इच्छा है, ए कीमती सीजा तुसा आप वर्तनी है, संभाल के रखनी। नामदेव जी ने ओ कीमती सीजा चुकी ते नदी विच सुट दिती। दरबारी वापस चले गए। बादशाह नु बेनती कीती, बादशाह भगत जी ने तुहाडी सीजा पानी विच सुट दिती। बादशाह नु बुरा भी लगा, गुस्सा भी आया, पर कर कुछ नहीं सी सकदा। दरबारियां दे नाल फिर बादशाह उस नदी किनारे भगत नामदेव दे कोल आया ते कहन लगा, भगत जी मैं बड़ी श्रद्धा नाल सीजा दिती सी, तुसा नदी विच सुट दिती। नामदेव जी कहन लगिया, बादशाह तू संभालण वास्ते कहा सी, असी तेरी सीजा पानी विच संभाल दिती। बादशाह कहन लगा, महाराज जे संभाली है ता मैनू एक वारी दिखा दियो ताकि मैनू तसल्ली हो जावे। उस वक्त भगत नामदेव जी कहन लगे, चंगा फिर बादशाह अपनी सेजा देखनी है ता पानी दियां लहरां वाल तक, जदू तेरी सेजा आवे ता पहचान लवे। बादशाह पानी दियां लहरां वाल तकन लग पिया।

भगत नामदेव जी ने उस वक्त नदी किनारे बैठ के ये शब्द उचारिया, जे गुरु दयाल हो जाए मुरार कहंदे ने कृष्ण भगवान, ता कृष्ण भगवान की प्राप्ति हो जाती। अगर गुरु दयाल हो जाए ता उतरे पार इंसान संसार

जे गुरु दयाल हो जाए देहोरा फिरे देवरा कहते ने मंदिर ता ओ पूरे पत्थर दे बने हुए मंदिर घुमा दिंदा नामदेव जदो पंडता ने नीवी ज्यादा समझ के मंदिर विचों कढ़िया सी ते नामदेव जी मंदिर दे पिछले पासे जाके बह गए सन ते परमेश्वर ने भगत बदले

अवर नहीं जाए, नाम देओ गुर की शरण आए। ए नाम देव ऐसे गुरु की शरण विच रहिंदा है, जेड़ा गुरु इन्ना कुछ देंदा है उस तो बगैर ए नाम देव किसी होर की शरण नहीं।

हाथ दोनों गोडिया से रखे नहीं, उत्ते सिर रखे। थोड़ी दूरों रावी नदी पे वगदी, कान जेड़े ने कुछ सुनने दी कोशिश पे कर दे ने। ए बीबी पेंडू अनपढ़ है, पर मन विच रब दा बड़ा प्यार है। तीन दिन हो गए ने इस बीबी नू ए आवाज सुन दे, रोज आंदी ए पति नू रोटी खवाण वास्ते। आवाज विच ऐसी खिच है, इत्थे बैठ के ए रोज आवाज सुन दी। अज तीसरा दिन है, कदी कदी आवाज सुनाई दिंदी, कदी पानी दे शोर विच गुम हो जांदी है। पर जदों आवाज सुनदी है तां मन खिंचिया जांदा है। कहन लगी मना चल के देखा ये गाण वाला कौन है। कहन लगी ढाडी भी सुनी देने, व्याहां दे विच गीत भी सुनी देने, गाई दे भी नहीं, पर एडी मिठी आवाज अज तक सुनी नहीं। चल के देखा भला कौन है गाण वाला।

वजंतरी कहंदे ने साज बजाण वाला। इस वजंतरी दी झोली विच इक साज पिया। ए बीबी चकदी चकदी कोल गई, मथा टेकिया, पुछिया, साईं जी तुसी केड़े देश दे लोक हो, कित्थों आए हो, गांदे हो के जादू तोड़दे हो? ताड़ी भी सुनी देने, व्यावां विच गीत भी सुनी देने, पर जो तुसी गांदे हो ए कदी नहीं सुनिया। सुनिया इंदर लोक विच देवते बहुत अच्छा गांदे, तुसी इंदर लोक तो ता नहीं आए? ओ वजंतरी कहन लगा, नहीं बेटा, असी ऐसे देश दे लोक हां, इत्थे साडे माता पिता

दिन बीत गया, अगला दिन आया। दोदे ने भी डंगर खूह ते बन दिती। दोदे दी घरवाली ने घर का काम सामिया अपने नियम अनुसार, दुध का गड़वा सिर ते चुक के धन गुरु नानक साहब के दर्शन वास्ते तुर पई। पिछे पिछे दोदा डांग लैके लुकदा लुकदा ए भी तुर पिया, पर जिस रस्ते ए बीबी जा रही सी उथे कोई पाप नहीं, उथे कोई पखंड नहीं, उथे तो आप अकाल पुरख धन गुरु नानक साहब बैठे। जिथे गुरु नानक होवे उथे पाप किथे, उथे पखंड किथे। ए बीबी उस गुरु नानक दे दर्शन वास्ते जा रही है जिदे दर्शन वास्ते दुनिया तरसदी है, ते पिछे पिछे डांग लैके लुकदा लुकदा एदा घर वाला दुधा भी तुरिया जा रहा है। पर धन गुरु नानक साहब कहंदे ने हों वारी हों वार ने कुर्बान तेरे नाम नू ऐ अकाल पुरख, मैं वारी मैं बलिहार जाना।

हरी तू बगैर मैं क्यों जीवा, क्योंकि उदे तू बगैर तो जीवना कुछ भी नहीं। गुरु साहब जी शब्द पढ़ रहे ने, ए दुता दूर सारे एक दरखत दे ओले लुक के बैठ गए, देखण वास्ते कि हुण की हुंदा। धन गुरु नानक साहब ने शब्द का भोग पाया, बीबी ने दुध सामने रखे, गुरु साहबां ने दुध दे चार

दोदा कह लगा नहीं पातशाह आपदा दिता बहुत खुश है। महापुरुषा दे तीन बचन होंदे ने, तीसरा बचन कीता दोदिया कुछ मंग लै। ता दोदा कहन लगा पातशाह जे तुखे हो ता ए वर दियो, बहुत सारी जमीन होवे। जिमीदार सी दोदा, बहुत सारी जमीन होवे, लवेरियां मच्छा गावां होन, दो तीन बलदा दिया जोड़ियां होन, सोने मकान होन। साहब जी कहन लगे ये सब कुछ मिल जाएगा, कुछ और मंग ले। कहन लगा बस पातशाह और कुछ नहीं चाहिए। मर्दाना कोल बैठा है, होली जी मर्दाना कहन लगा दुदिया सतगुरु जी तुठे ने नाम दी दात मंग ले, ते जिहड़ी चीज बारे ज्ञान ना होवे ओ चीज आपा लैंदे ने। दोदा होली जी कोलों कहन लगा मैनू ता जमीन मझां गावां चाहीदियां ने, मैं नाम की करना है, मेरे किस तों किया ता होली, पर सतगुरां सुन लिया ते नाले हस पए। कहन लगे दोदिया ये सब कुछ मिलेगा, तेरी घरवाली सतसंगण है, तेरी घरवाली दे सदका जा तेनू नाम दी दात भी प्राप्त होवेगी। कई बीबिया इन्ने भागा वालिया हुंदियां ने कि जिन्हां दी सदका कुलां तर जांदियां ने। हुण दोदा भी सतसंगी बन गए, होर भी जिन्ने जिन्ने गुरु नानक दी सोभा सुनी वह भी आण लग पए। जेड़ा भी आंदा है फिर होर किधरे नहीं जांदा, जंगल दे विच आनंद ही आनंद हो गया हर पास।

अद तू अगे आया अचानक दिखना बंद हो गया नजर कुछ नहीं आता एकदम रुक गया पिछा मुड़ के देखे ता थोड़ा थोड़ा नजर आता है पूरा नहीं दिसदा अन्ना हो गया अगे जांदा है कुछ नहीं दिखता पिछे मुड़दा है चौला पहनदा है पूरा नहीं दिसदा ना अगे जान हुंदा है ना पिछे मुड़न हुंदा है नाल दे साथी बड़े हैरान ने कि करोड़िए नूं की हो गया है करोड़िया कहंदा मैनूं दिसदा कुछ नहीं अगे जाना बिल्कुल अन्ना हो जाना वा पिछे मुड़दा वा ता भी नहीं दिसदा पूरा बड़ा परेशान हो गया ए दुनिया कुदरती कोई असूल ही ऐसा है कि कुछ लोग बंदगी करते नहीं कुछ लोग बंदगी करने वाले नु चंगे नहीं समझते उन्हां दी कोशिश होंदी कि जड़ा इंसान बंदगी कर रहे है इन्हू मैं खत्म कर दी ये बंदगी ना करे अज करोड़िया भी इसे वास्ते आया कि गुरु नानक का प्रताप वध रहा है ये तो निंदकां दी चुक सी ते दूसरा माण ये कि मैं माया वाला वा मेरी धरती ते गुरु नानक ने कब्जा किया मैं उन्हूं खत्म करना है पर अन्ना हो गया ना अगे जाया जांदा ना पिछे मुड़िया जांदा ताइने नूं ओ पागां वाली बीबी अते उहदा पति दोता खेतां विच कम करके आ रहे सन करोड़िए नूं देखिया ता समझ गए कि धन गुरु नानक साहब नूं ए मारन वास्ते जा रहे पर अन्ना हो गया उस बीबी ने आवाज दित्ती ओ करोड़िया शोक दी कांग गे इक नाड़ा जदों दरिया विच हड़ आया होवे तां उहदे सामने छाती नहीं डाई दी दरिया रोड़ के लै जांदा है गुरु नानक दरिया है समुंदर है ते एवें अगे हिकड़ा ही जाना है जे कुछ लैना ही थले उतर घोड़े तू डांग सुट साथी वापस मोड़ मन विच निम्रता लिया वो गुरु नानक नूं मारन चले जड़ा मरिया नूं जीवन दिंदा है इस जमीन बदले वो तारशां दा मालक है दाता वो दिंदा है तो उस गुरु नानक नूं मारन चले इस साहब जी बाणी विच कहंदे ने जिस अगे जोर ना चले खले की चरदास जिथे जोर ना चले उथे हाथ जोड़ के फिर अरदास करनी पैंदी हुण करोड़िए दा जोर कोई नहीं चलदा डांग सुटी घोड़े तो थले उतरिया पैरां विच जुत्ती लाई साथी वापस मोड़े मन विच निम्रता लियांदे ता दिखण लग पिया दोदा अगे वधिया करोड़िए दी बांह फड़ ली क्या करोड़िया तू गुरु नानक नूं मारन आया सी पर चल देख गुरु नानक तेनूं की कहंदा है ते करोड़िया डरन लग पिया कि किधरे गुरु नानक साहब कोई सराफ ना दे दे माता मेरी कुल दा ही नाश हो जावे ए डरदा डरदा दोते दे नाल तुरिया जा रहे है दरबार विच पहुंचे संगत बैठी है तन गुरु नानक साहब शब्द पढ़ रहे हैं दोते ने मत्था टेके

नानक जाने बुरिया दे नाल नेकी किस तरह करनी है ये तां गुरु नानक जानदा है। इसे वास्ते तां उस गुरु नानक नूं चारे वरण दे लोक आके झुकदे ने क्योंकि गुरु नानक सारे नाल प्यार करदा है, सारिआं दे दुख नाल दुखी हुंदा है, सारिआं नूं सुख दिंदा है और उपदेश करदा है। ए भाई उस अकाल पुरख दे नाम तों बलिहार जाओ जिन्हें इस संसार बनाया, ओदा नाम जपो ताकि तुहाडा जीवन सुखां दे नाल

ये संसार एक वृक्ष है, इस वृक्ष ते सारे ही पंखी बैठे हैं। आप जानते हो कि पंखी अपनी अपनी चोग चुग के जदों सूरज लथ जांदा रात पैण लगदी है तां वृक्ष ते आके कट्ठे हो जांदे हैं। इसे तरह यह संसार वृक्ष है, 84 लख जूना विचों परमदा अपने कर्मां दा खटिया खांदा ए वृक्ष रूपी इस संसार ते आउंदा है मनुष्या जन्म प्राप्त करके। जिस तरह पिंडां विच शहरां विच हर एक मनुख ने अपना अपना घर बनाया है, इसे तरह वृक्ष ते भी अपने अपने आलने बनाए होंदे हन। पंखियां ने ओ आके बैंदे हन ते जां रात बीती सवेरे अपने अपने राही पैंदे हन, उड़ जांदे हन। इसे तरह ए मनुष्या जन्म भी एक वृक्ष है। मनुष्या जन्म पंछी रूप होके संसार ते आउंदा है, मनुख अपने अपने कर्म भोग भोगदा होया। जिन्हां ने तां भाई इत्थे आके अपना जीवन मिठत नीवी नानका गुण चंगियाईयां तत मिठा बोलदे हन, नेव चलदे हन, अपनी किरत कमाई विचों चंगे पासे भले पासे लाउंदे हन। सास ग्रास नाम जप के जो जांदे हन उन्हां दा आउणा सफल हो जांदा है, ते जेड़े इत्थे आके माड़े कर्म करके जांदे हन उन्हां नूं फिर 84 लख जून दे गेड़े विच दुख भोगने पैंदे हन। इस लई हजूर कहिंदे हन भाई ए मनुष्या जन्म प्राप्त होया है, इस नूं जप जप के सफल करना। जिस तरह दिन चढ़दियां पंछी अपनी अपनी चोग चुगन लई अपने अपने कर्मां दा खटिया खान लई उड़ जांदे हन, इसे तरह जदों काल रूपी सूरज चढ़दा ते मनुख भी फिर ए पंज भूतक शरीर छड के तुर जांदा। इस लई गुरु नानक सच्चे पातशाह कहिंदे हन किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलन हार, किदे नाल दोस्ती करिए। ख्याल कीता हो सकदा है कि राजा सुखी होवे पर ओ तां सब तो दुखी है। हो सकदा महल माड़ियां विच रहन नाल कोई सुख प्राप्त होवे ओ भी नहीं है। हो सकदा चंगे बस्तर पहनन नाल जां गहने पहनन नाल सुख मिल जाए ओ भी नहीं है, क्योंकि सुख तां हरि दे नाम विच है, सुख तां परमेश्वर दी भगति विच है। इस लई गुरु नानक सच्चे पातशाह कहिंदे हन सब जग चलन।

गरीब नवाज दो पैर दिन दे बीत चुके हैं, आन वाले दो पैर पता नहीं वेखांगा कि ना वेखांगा। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे भाई बाला तू भी मौत नू दूर समझदा, मौत इतनी दूर नहीं है। फिर दोहा ने हाथ जोड़े ओ मेरा दे साई आप कृपा करो आप दसो मौत नू कितनी को नेड़े समझते हो। धन गुरु नानक पातशाह जी ने तनाश्री राग विच शब्द उचारण कीता आख्या हम

बहु पर पंच कर परधन लियावे। सुत दारा पे आन लुटावे मन मेरे भूले, कपट ना कीजे अंत नवेरा तेरे जी पैले। जेड़ी पापा दी खटी तू खट रिया है, जिना विच्चों तेरे अनेकां रिश्तेदार, बाल बच्चे घर वाली वरसाउंदी है। याद रख ए लेखा उन्हां कोलों नहीं मंगया जाना, अंत नबेड़ा तेरे जी पे।

जो वाहिगुरू ने तैनू बख्शे तू उना दी कीमत ही ना जान सकिया। जिवें एक कंजूस सारा जीवन कमाई करता रहा, धन इकट्ठा करता रहा, ते मन विच सोचदा है भाई चंगी तरह धन इकट्ठा करके ते फिर मैं इस नूं भोगांगा, फिर सुख मानांगा। सोचदिया सोचदिया अंत समा आ गया। जदों अंत समा आ गया जमदूता ने आख्या भाई हुण तेरा अंत समा है ते तू साडे नाल चलना। ता कहन लगा मैं बड़ा धन जोड़िया, बड़िया मेहनतां कीतियां हन, बड़े छल कपट करके माया कठी कीती है, मैनू भोग ता लैन दियो, मैनू 24 घंटे दे दियो, मैं तुहानू 1 करोड़ रुपया दे दिंदा। जमदूता ने कहा एक पल भी नहीं मिल सकता क्योंकि ए धन उथे चलदा नहीं, तू जिथे गल कर रहे उथे तां नाम दा धन चलदा है। इस कंजूस ने आख्या मैं 5 करोड़ दे दिंदा हां, मैनू कुछ विश्वास होर दे। आखिर कहन लगा मैं सारी जीवन दी कमाई जितना भी मैं कमाया है मैं सारा ही दे देंदा हां, मैनू कुछ विश्वास उस दे बदले दे दियो। तां जमदूता ने कहा ए विश्वास तां किसे भी कीमत ते तैनू नहीं प्राप्त होण लगे। तां कहन लगा फिर मेरी एक मंग है कि मेरी कबर ते लिख देना कि मैं सारे जीवन दे पल छिन कमाई विच धन इकट्ठे करन विच ला दिते ते सारे जीवन दी कमाई दे बदले मैनू 1 श्वास भी नहीं मिलिया मुल। इस तो भाव है कि जितने अमोलक श्वास हीरियां लालां तो भी महंगे मैं जप जप के सफल करने सी मैं व्यर्थ गवा दिते। क्योंकि हम आदमिया एक दमी पता नहीं अखीरला श्वास कदों आवे भाई, जे श्वास दे नाल तू जपया होवेगा ओ श्वास तेरा दरगाह विच कबूल हो जावेगा। इसलिए गुरु नानक सच्चे पात्र

नानक सच्ची पातशाह बख्शिश कर दिया न भाई। पही प्राप्त मानक दे हुरिया, गोविंद मिलन की एहो तेरी परिया। ए प्राप्त होए हन तेनू अमोलक श्वास, ते जितने तक दुनिया विच तू रह रहे है। पले पुरशा पासों कोई चंगी गल सुन पले बन, ते जे आप बोलना चाहुंदा है तो परमेश्वर दी भक्ति कर, ओदा कीर्तन कर, ओदा जस कर, ताकि तेरा संसार ते आया सफल हो जावेगा। इसलिए जब लग दुनिया रहिए नानक, किस सुनिए चंगा सुनिए और चंगा ही कहिए। मिथत नीवी नानका गुण चंगियाईया तत, जिन्हां नूं ए चंगे गुण प्राप्त हन भई, उन्हां दा संसार ते आउणा सफल सफल हो जावेगा। गुरु नानक सच्चे पातशाह

कर्म की है। सतगुरु अपने सिख नूं परमेश्वर दे नाम दे नाल जोड़दा है। परमेश्वर दा नाम हिरदे दे विच दृढ़ करवांदा है और गुरसिख नूं सच्चे सुख दी प्राप्ति करवा दिंदा है। ए सुख जो नाम दे राही प्राप्त हुंदा है गुरसिख नूं साध संगत दे विच्चों प्राप्त हुंदा है और इस दी प्राप्ति तो बाद जितने भी दुख हन कलेश हन इन्हां सारयां दी निवृत्ति हो जांदी है। सारे ही संशय दूर हो जांदे हन ते सुखां दी प्राप्ति हो जांदी है। साहिबां दा फरमान है, गुण निधान हर नामा जप पूरे।

गुरु दी जय जयकार करदा है। इस जय जयकार दे पिछे इको ही गल है जो राज दी है, क्योंकि गुरु तो बिना होर कोई ऐसा नहीं जो प्राणी मात्र लई मुकत दा द्वार खोल सके। नौ दरवाजे दसवां द्वार, बुजरे ज्ञानी एहो विचार, एहो ही ब्रह्म दी विचार है। और जेड़ी विचार गुरु तो बिना होर कोई दे नहीं सकदा। साई फरमान करदे हन, गुर कीनो मुक्त द्वारा सब सृष्ट करे जयकारा, क्योंकि दुनिया विच कोई किसे दी एक दिन दो दिन महीना जा साला बदी मदद कर सकदा है, मगर परमात्मा जो है ओ गुरु राही इस संसार दे विच आके सारे संसार नु फिर परमेश्वर दे नाल जोड़दा है। साई फरमान करदे हन, क्योंकि गुरु ही है जेड़ा दोबारा इस मनुख नु परमात्मा दे घर तक पहुंचा सकदा है। और ऐसे दा ही साथ सच्चा है, जो सच्चे गुरु दा साथ करदा है ओ ही सच्चे परमात्मा नु पा

जगी और न यही महात्म में अवतारी उजागिर यान कियो तिनके दुख कोटिक दूर गए मथराज में अमृत नाम पियो एह मद ते मत चुके रे मन पेद पेद न जान दियो पर ताछिर

सुन बेद बिरंत बिचार रहो हर जप न छाडो एक करी। मथुरा गण को प्रभु दीन दयाल है संगत सृष्टि।

पंचायने आपे होवा आपने आप साजियाने आपे ही समखलोवा आपे पट्टी कलमिया आप लिखन हारा हुआ सब उमती

0: गुर एक पैदा जाए जल, सतगुर कोट पैदा आगे होए लेत है।
1: तू एक कदम सतसंगत वाले चलता है ते गुरु तैनू करोड़ा कदमा अगो लैण आए। ऐसा गुरु क्यों ना ऐसे गुरु दे बलिहार सच्ची है। किना कदमा से लैण आंदा कदों गुरु लैण आंदा है। साहब बाणी विच इसका हवाला दे रहे कि जै मार्ग के गने जाए ना कोसा, हर का नाम तू गुरु बस एक कदम रखता है, गुरु तैनू करोड़ा कदमा अगों लैण ले आ रहा है। क्यों ये मेरा है, ये मेरे पासे आ रहा है। ऐसे लई साहब बाणी विच कहंदे हन कि मित्र उस नूं बना, ओ तेरा सच्चा मित्र है जेड़ा इत्थे वी ते दरगाह विच वी आखे भाई ए मेरा है भाई, इस दा हिसाब मेरे पासों लो। सज्जन सेई नाल मैं चलदियां नाल, चलन जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दिसन। ऐसा मित्र कौन है प्यार नाल आपको धन गुरु गोविंद जी। एक पिता एक सके हम बारिक, तू मेरा ऐसे गुरु तो सदके जाए, ऐसे गुरु तो बलिहार जाए। ये शब्द जो आप सरवण कर रहे हो धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी का ये शब्द है।